0: इस समय प्रलय को करने वाले मुख्य संकर्ता इंद्र सीदस व्हेन ही सीज दिस
1: इंद्र के ब्रज अर्चक के पूजा लेख लेकर श्री कृष्ण भगवान को जितना थे और नंद को ब्रजवासी अपने के क्षत्रिय समाज उत्तर को कोते हैं
0: जैसे माजेंगे ही हु हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड नाउ सेज टू गॉड He thinks that this Sri Krishna, they decide to follow this, that is Sri Krishna, aho bari acharya hai. They think that he is God and they forget who the power that I have, Govardhan Puja ki, they want to do Govardhan Puja, then no problem, rahene wale. And he summons, bachao ko mudh

0: अज्ञानी किसी बातों में
1: दिस लिटिल बॉय इज अ फूल
0: अज्ञानी ही डजंट नो दे डिसाइड इंस्टेड ऑफ व्हाट दे हैव बीन डूइंग फॉर इयर्स एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस दे डिसाइड टू फॉलो दिस लिटिल चाइल्ड.

पद को नरित्व गोकुल को के बल से वर्ष करने लगे ही समन से क्लाउस और समवर्तन को जस्ट लाइक व्हेन द टाइम ऑफ समवर्तन एंड ही अनलीशेस द रेन्स अपॉन ब्रज वर्ष को महाप्रचंड पवन से टर्बल अ टॉरेंशियल रेन्स एंड टर्बल पशु पक्षी सबको धड़कन कांपने लगे इवन द एनिमल्स दे स्टार्टेड टू सफर दिस इज Bhagwan tells us before I cross over to puja that sometimes because the pride of one, everybody has to suffer. One person in a family, the pride destroys. Karte ghar ghar kaam pe Govind ko Krishna sharan aaye hain. They go to Bhagwan and they ask him now what should be done. Krishna Krishna Mahabhaga tum natam gokulam prabhu ratum marhasi devam kupit bhakt vatsala shila varsha nipatena hanyamana chetasam निरीक्ष्य भगवान मीना कुप इंद्र कृतम हरी अतो लॉर्ड अभिमान इंद्र देवता को लक्ष्मी मत खो गया ही वाज फिल्ड विद प्राइड एंड दे सेड अतो कृष्ण यू आर अवर सेवर हे कृष्ण महाभाग समवर्तन को भक्ति हकार का भक्त हितकारी दैट यू आर द वन दैट सेव्स योर डिवोटीज इन टाइम्स ऑफ ट्रबल गोकुलनाथ इस महाक्रोध इंद्र से अपने गोकुल और हमारी रक्षा करो सेव अस फ्रॉम दिस रॉथ ऑफ इंद्र जब बड़ी कोशिश लाए अलौकिक उसमें तब उसको दुख दूर करने वाले यू आर द वन दैट दुख दूर करने वाले यू टेक अवे आवर ट्रबल्स बिना ऋतु हरता यह भयानक शिला अट सेव अस ओ लॉर्ड व्हाट शुड सो थिंकिंग लाइक दिस व्हेन गोकुल मुझे क्योंकि सब गोकुल वासी मुझे के अपना प्राण धारे He thinks to himself that sab gokul vasi, all of Gokul. This evening Auntie Shirley was asking me about her name is Gokul, where they got the name Gokul from. Gokul is a place to residence of Bhagwan Sri Krishna. Apne pran pyare samjhate, that save, I must do something to save them. Yaha sab mere darshan abhilasha karta rahte hai. Therefore, I have to take care of them. I cannot leave them. Ek tik prayer ke na haste na, kripa govardhana chalam. When he does this, then Bhagwan says very beautifully, उस दिन गजवासों को तेज चकोरी श्री कृष्ण चंद्र चंद्र मुख देखते रहे Lord who is filled, his face is beaming like a full moon. Shyam Sundar bhi saat din tak padavan dhare. He had given the boon in the previous birth that Govardhan wanted to be part of Setuband. He told him, he says, no, tell him when I come back in the avatar of Ram, that when I return as Sri Krishna, I will take him up for 7 days and 7 nights. And so said, so done. Bhagwan in his little finger took up Govardhan Maharaj and placed him on his little finger.

0: fell.
1: उस गोवर्धन को पर्वत उस छत छत हुए इट बिकेम लाइक एन अम्ब्रेला एंड अंडरनीथ देयर ग्वाल बाल सब ब्रजवासियों दे विल स्टे देयर जब आकाश में बादल थे आफ्टर द सेवन डे और सूर्य नारायण उदय हुए भयानक वर्ष है और पवन चलने से बंद हो गए गोवर्धन श्री कृष्ण गोपियों को कहा हे गोपी स्त्री बालक गाय के छोड़कर तुम इस पर्वत को नीचे बाहर निकल है इस मत पवन वर्ष को गाय के नदियों And like this, of course. He told them that you can remain here, shelter, keep your everybody here. Yashoda Rohini aur Bali Balram Maharaj ko Chandra ko sneha hai. And when it was completed, they left the well. Iti katha Shukadevi ki bole hai Raja Parikshit. Antariksh Devta ko samuh sadhakan siddh ganva charan santushta stuti padne lage. Phool ko varsh karne lage from the heavenly regions of course. Flowers rain upon the green mountain, Govardhan. And when the divine Lord, of course, placed them down, Bhagwan says, "Tum saakshat Krishnasya, paripurna tasya cha, goloka gok ganai gopikal, gopal sangito tum hi Govardhan naam, vrindavan virajate, tum no ye girinam sarvesham girijatave sampratam, namo vrindavan vankaya, tubhyam goloka lalini, purvanandara patraya, namo

ना गिनसी डोले वो दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले ये लंबी चोटी ना गिनसी डोले वो दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले ओ लेकिन हम हैं वो दीवाने जो नहार किसी से

0: Serving the dreams of our ancestors. Radio Jagati, 102.7 FM.
1: 102.7 FM.
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. तुम होती तो कैसा होता? तुम ये कहती, तुम वो कहती. तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं.

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जुम्मन मियाँ, वो महफिल ही कैसी जहां दिल वालों के साथ साथ दिल जले ना हो। तुम दिल से दिल वालों के लिए गाना, दिल जलों का ख्याल हम रखेंगे।

लक्ष्मी माता मन में भर दो आशा का उजियारा, जीवन दीपक के प्रकाश को दसे नहीं अंधियारा। लक्ष्मी माता मन में भर दो आशा का उजियारा, जीवन दीपक के प्रकाश को दसे नहीं अंधियारा। आ